परम सत्कार्य गुरु प्रसाद संगत जी, अरदास गुरसिख पास एक बहुत वड्डी शक्ति, एक बहुत वड्डी ताकत, एक बहुत वड्डी विल पावर है। किसी कार्य नूं आरंभ करना होवे तां वी अरदास, किसी काम नूं समाप्त करना होवे तां वी अरदास, किसी चीज की लोड़ होवे तां वी अरदास। इंज कह लो कि गुरसिख की अरदास गुरु नाल एक ऐसा संबंध है, ये जो मंगना चाहे परमात्मा को ले सकता है। पर ख्याल करना, कईयां दा विश्वास टुट गया, कई गुरु नालों टुट गए, कईयां दी जबान ते गिला आ गया, शिकवा आ गया कि मैनू ते बड़ा चिर हो गया अरदास करदे आ, मेरी नहीं अरदास सुनी गई। आओ, दास ने यह प्रकरण तां आरंभ कीता कि सानू अरदास ते यकीन आ जाए। जिन्हां दी जबान ते यह गिला है कि साडी अरदास कबूल नहीं होई, भाई मैं उन्हां नू यह गल कहनी चाहना हां, कमी साडे विच है, परमात्मा विच नहीं है। हो सकता है कि तू सही अखर अरदास दे वरते ही नहीं, जिवें अरदास करनी चाहिदी सी तू ओवें कीती नहीं, जिवें परमात्मा नू अरदास सुनानी सी तू ओवें सुनाई नहीं। इसलिए साध संगत आओ, अज आपां अरदास दी विधि सीख लईए। जे ते अरदास विधि अनुसार होवे कदी बिरथी नहीं जा सकती, पर जे सानू पता ही नहीं अरदास करनी किवें है ते खिमा करना, फिर गुरु ते शिकवा करन दी कोई लोड़ नहीं। कमी साडे विच है, गुरु विच नहीं है। तुछ बुद्धि अनुसार मैं गुरु दरबार वल्लों कुछ बाणी दे प्रमाण तुहाडे समक्ष रख रहे हां, जरा ध्यान नाल सुन लेना अरदास दी विधि की है। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी लिखते ने, अरदास एक 5 मिनट का कैप्सूल है, पहले ख्याल कर लेना, अरदास एक 5 मिनट का कैप्सूल है। इस 5 मिनट के कैप्सूल अंदर समुचा इतिहास सिख पंथ का बंद किया हुआ है। हुण इन्हां 5 मिनटां दे विच अरदास किवें करनी है ध्यान करना। सब तो पहले अरदास की विधि,

वाणी के बोध नाम के जहाज साहेब धनगुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिंद तो अपनी रचना तो इन्हों बचना का उच्चारण करते ने हजूर फरमान करते ने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेहे कितां दा जोड़ नहीं साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उना जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदे आ तू गुरु नानक नू मिल सकने साहब कृपा करदे ने बख्शिश करदे ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहंदे ने

दूसरा रास्ता, दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत। साहब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै, पपीए नू वेख लै, जेड़ा स्वाती बूंद दे पिछे पपी पपी प्या करदा। साहब बाणी विच कहिंदे ने

है उपदेश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नू पिठ दे दिती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता, भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू, नाम जपण वालियां नू, सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजै शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मींह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा हजूर।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमता दा साई कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

शायद की रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक के गुणा का अथाह बयान करते हुए अपने रचना तो कृपा करते ने ते आंदे ने।

जे भाई छत्तां समुंदरां दे पानी दी शाही बना ले जावे। कलम करो बन राय सारी जंगल ते सारी बनस्पति दियां कलमां बना लिया जावे।

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार दिन तो आंदे ने एक घड़ी दिन समोको बहुत भयारे, ए मेरिया मालका एक घड़ी भी एक पल भी, तेथों जे मैं विछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

एटी प्यास है तेरे दीदार दी, एटी आस है तेरे दीदार दी, निरे मालका कर कृपा मेरे दे। को ऐसा संत मोको फिर है मिला, कोई भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा चितरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंग ने मन ऐसा ने हो करे, ऐसी प्रीत कर ले जिवें मछली ने पानी नाल कर ली, चातक ने पपिए ने स्वाती बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है सुगंधी नाल है, जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पाछा मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल।

सब तन का गुण सतगुण गुण सतगुण जित मिल हर पैदा तू कर्म कर्म समर्पण कर मैं सतगुण अगर ना

वही नदी के किनारे थे, दुनिया नु तारन वाला मेरा तन गुरु नानक समाधि लगा के बैठा है।

इस अमृत को प्राप्त कौन कर दे हम जिन भिम्बर से अमृत धारा मंत्री सुन शब्द विचार जिन्होंने वही शब्द न सुने कन्ना कटोरे बना के निरोल अमृत बाणी का रस पीता है और खुशकिस्मत गुरु नानक के दर से सदा ही अमृत रस है पर पीले भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे उन्होंने झूठे अमल की लोड़ ही नहीं जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे अठे पहर महल में चानन बरन प्रेम दे दीवे फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे बाबा ईसर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते सन दीवा जगाने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी पहला तो दीवा बनाइए फिर उसनू पकाइए ओले वास्ते तेल सरसों में नपीड़ के करना पैंदा सरसों कितों उगदी बड़ी मेहनत फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा वट की लोड़ ओने वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाइए भाई दीवा ए सोना दीवा जगाई किवें जगेगा प्यार दे नाल दीवा जगे भाई जग गया दीवा फिर लोग आपे कह दे नहीं फलाने घर दीवा जगदे पे आखो श्री भाई सारे आखो भाई सरत माई भाई जो मेरे धन गुरु नानक ने दरबार च आके जुड़े हो आओ भागा वाले हो अपनी रसना पवित्र करो सेवक के कम सफले करो प्यार नाल आखो सतना धन्यवाद जो गुरु ने प्यारे जुड़ बैठे हो और गुरु जिसने सानू सबों कुछ दिता है साडे वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार दी बेबे ने कहा सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लखमीदास तुसी बाहर चले जाते हो फिर उदास होके मेरे को आ जाते हैं कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है आखो श्री अगला भी कोई बापू दूजिया के बापू अपने बच्चिया मठियाईया लिया के देंगे खिलौने लिया के देंगे तरह तरह की चीजा लिया के देंगे बेबे साडा भी कोई बापू वीर मैं इन्हों छाती ना ला के कहनी हाँ पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है वीर हुण ना जा हुण ना परदेसां नूं जा तो प्यारी साध संगत परमकारी दाता जी दोवां बच्चियां नूं श्री चंद ते लक्ष्मीदास गोडियां ते बैठे सानूं ठा दिता पुत्र जगत दा मिठा मेवा है प्यारिओ पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता दी छाती फड़ जांदी है पर मेरे दाते ने अपने पुत्रां नूं उठा के ते बेबे वाल मुखातर होके कहा सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले रब आप ही पाल सी सारियां नू जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दुलारे बेबे मेरे निरंकार रब बनाया संसार दुनिया दुखी है काम करो लो मोहंकार की अगली साली बेबे मेनू जान दे ना बिठा इतने संसार रोगी हो चुका है ए संसार रोगी नाम दारू नाम दा दारू दिता उस दाते ने जिस दाल गुरुपुरब मना रहे हो यही दात होती है आए कर प्यार नाल पढ़ो पहले सेहत बोले तो पीछे सारी सही संगत गज के अपनी अपनी हाजरियां लगवा लो बाबा जी बचन करते सन जरा संगत जाके रौला पाता है वह इतों कुछ नहीं लैंता जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं करता
بابا جی کہندے سن او گرو کی دگا کا چور ہے تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے در تے دی حاضری لگ جاندی ہے گرو نانک حاضر ناظر تے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپور منایا سفلا ہو جائے پیاری سنگت پہلا سیر بولے پیچھے ساری سنگت واہ گرو نانک

नेत्र बंद कर की से मर्दानियों खोल देख खोल यहां मर्दाने ने की देखे हैं जिसका दरवाजा 33 करोड़ देवता खड़कांदा है अज मेरा धन गुरु नानक भाई लालो का रूह खड़कांदा है भाई लालो कच्चा कोठा दरवाजे के खोते हैं वो दाता है जिन दरवाजे के दुनिया सारी कायनात आके झुकी है प्यार दे नाल भाई लालो तो भाई लालो हुआ अंदर बैठा है भाई लालो धर्म की किरत पिया करता है ते स्वास स्वास पे जप रहा है धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक अज रसना धन गुरु नानक भी जपती है अचानक ही कला आके गूंजिया धन गुरु नानक भाई लालो बुआ खोल नेत्र खुल गए हो मना एडी मिठी आवाज अगे इन्हों कना ने कदे नहीं सुनी आवाज है कि कोई अमृत का छट्टा है एडी मधुर आवाज पता नहीं है कौन है आप ही सुन जाए भाई लालो तो मना की पता अरदासा सुन के किधरे साईं आप तो नहीं आ गए की पता फिर आवाज आई उठे भाई लालो आके दरवाजा खोलिया की वेख्या प्यारी सह संगति जिस मूर्त का ध्यान पै धरता सा मूर्त सूरत बन के धन गुरु नानक सामने खड़ोता है चरना तन रो रो के चरना नु धो दिता ते मेरे सजे पातशाह जी हुआ है जिना राह तू आऊंगा राह तू सदके जावा बारे जावा आई लालो तेरे प्यार में खिंच के लिया प्यार सब तो वही दर किसी गुरमुख ने लिखे है जेकर रब वेखे उच्ची जात वलों जगह सैने दी नाई बन आमदा ना जेकर रब वेखे कर्म कांड ताई देर पीलनी दे कदे खाऊंदा ना जेकर रब नू पाऊंदे पंडित मुल्ला दन का वेसवा पार लंघाऊंदा ना जेकर रब वेखे धन माल ताई तर बिदर दे जा करे बाऊंदा ना जेकर रब नू पाऊंदे माल पूड़े साग लालो दा जा करे खाऊंदा ना साई लोका प्रेम देवत ईश्वर प्रेमी जना नू करे बुलाऊंदा ना प्यार सब तो वड्डी दा अज तक लो प्यारी साध संगत भाई लालो ने कारी आप निरंकार धन गुरु नानक आ गया है प्यार इतना है कि हजूर नु इतनी दूरों प्यार दिया कुटिया पा के खिंच ले ते घर विच गरीबी इतनी है कि मेरे दाते नु बिछाण जोगा भाई लालो को आसर ही करो सोच सोच के अपने उपरों खद्दर की चादर ला के धरती से भी चा दी अरदास की सोने आसरा से बहन वाले आ मैं गरीब की यह चादर ही प्रदान कर तो प्यार का बदला मेरा भागा बड़े प्यार नाल लालो तेरी मैली चादर वाल वेखा कि तेरे चिट्टे दुध वर्गे मन वाल वेखा मैं तो मन के आसन से रहता आ मरदानिया मरदाना भी बह गया हजूर ही बैठे हैं मरदानिया फिर कीर्तन कर मरदाने ने कीर्तन आरंभ किया साहब की सिफत की थी ते ए छोड़ पड़े है श्री राज में मेरे धन गुरान का विचार तेरी की

संगमान जो गुरु की संगत जियो, दो जहान मालक शब्द गुरु की पावन हजूरी विच जुड़ बैठे हो, भागा वाले हो, जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी रूहानियत दे पुंज हैं, उथे संगीत दे सोमे भी हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी आबादत दे नाल नाल संगीत दे महान सम्राट भी हैं। मोस्टली बाणी रागां अते तालां विच है। मैं तो ऐसा समझदा हां कि जिवें शब्द गुरु है, संगीत सिख है। सिख ते गुरु दा समेल होना बहुत जरूरी है। सिख गुरु तो बिना सोहना नहीं लगता। संगीत शब्द गुरु है, संगीत सिख है। बहुत कुछ नहीं कहांगा, तुसी आलम विद्वान लोग ते गुरु के सिख बैठे हो। मैं तो समझदा गुरु का सिख बनना बड़ी महानता है। यह बच्ची अनाउंस करती सी, शायद इन्हां दे अंडरस्टैंडिंग च फर्क रहा है। बाई सिख नहीं, सेवक ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बख्शिश से गुरु गोबिंद सिंह जी की रहमत का सदका इस धरती से 21 अमृत संचार अपने हथें किए हैं। 22वां एक अमृत संचार असी कीता जिसकी सरप्रस्ती हैड ग्रंथी ज्ञानी कृपाल सिंह कर रहे सी, 22 किए हैं। उहदे विच मस्कीन जी, हैड ग्रंथी ज्ञानी कृपाल सिंह, वैद गुरचरण सिंह जी, भाई दलीप सिंह दर्दी ते दास, ओ वाल साल विच कीता सी। उंज 21 अमृत संचार सेवक ने धन गुरु ग्रंथ साहब ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी बख्शिश दा सदका निष्कामता सहित आप निभाए हैं। ये खुशकिस्मती है। खैर, तुहाडे सामने जैत श्री महला पंजवा, वीर जी जैत श्री गा के गए हैं, मेरे गुर भाई हैं। तो मेरे भी बैठे थले ख्याल आया भी इको उस्ताद दे शिगिरद हां। कोमल जी ते सेवा विच बैठ के इन्होंने तलीम हासिल की है, तो गालबन मैनू भी उन्होंने कोले बैठने का समा बनिया। 48 साल तां मैनू कीर्तन करदिया हो गए हैं, अद्धी सदी है। खैर, जैत श्री महला पंजवा पूर्वी थाट का मेरे वीर जी थ्योरी थोनू दस ही गए हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देव। पूर्वी थाट का औड़व संपूर्ण राग है। औड़व तो मुराद पंज सुर, जांद्या पंज सुर लगते हैं, आउंद्या सत सुर लगते हैं, जांद्या रिखव ते दैवत विवर्जित है, आउंद्या संपूर्ण है। इस विच असीं गुरु साहब जी की बख्शीश से तुहाडी असीस सरका पंज ताल की सवारी गायन करते पए हां। 15 मत दे जसदे हुंदे हन। बहुता समा नहीं लवांगे, शब्द भी रीत भी गायन करांगे, पर चूंकि एक परंपरा है, इत्थे 72 तो मैं आया हां। गुरु रामदास पातशाह जी के चरणों में हर साल कीर्तन दरबार में सेवक नूं याद करते सी, क्योंकि उत्थे परंपरा सी किसी समय बड़ी बहुत वधिया कि जिस गुरु का शब्द है, जिस राग विच है, गुरु रामदास पातशाह जी का शब्द होवे उन्होंने पुरब ते, जिस राग विच उन्होंने उच्चारण किया उस राग विच होवे। मैं तो ऐसा समझदा हां जिवें कुछ सिखी दे बड़े कीमती सिद्धांत सिख जगत विचों अलोप हो गए हैं, उस तरह संगीत भी अलोप हो गया है। बहुत कीमती सिद्धांत प्रदर्शनी है। सिख सूरत ते सीरत नाल सोहना लगता है। गुरु की सूरत भी होवे दित्ती हुई सिख कोले, ते सीरत भी होवे। कीर्तन भी गुरु की सूरत ते सीरत नाल सोहना लगता है। सूरत की है? शब्द। सूरत की है? संगीत। सीरत की है? गुरु की सिख्या। तो खैर, पंज ताल की सवारी गायन करते पाए हैं। 15 मात्रे हैं जिसके अंतरा आखांगे, 15 मात्रे विच, फिर दूसरा अंतरा होवेगा 41 विच, तीसरा अंतरा होवेगा 3 ताल विच, जिसनू पड़ताल दे रूप विच भी गुरु रामदास पातशाह जी ने पड़तालां भी लिखियां हन। ताल तां लिखे हन, पड़ताल भी लिखे हन। तो खैर, कोशिश करांगे कि संगीत दे नाल नाल गुरबाणी दी पंक्ति सिख संगतां नू बिल्कुल स्पष्ट रूप विच समझ विच आवे। दर्शन प्यासी दिन सुरात, चितवो अन दिन नीत, खोल कपट गुरु मेलिया, नानक हर संग मीत। सलोक है, एकाग्रता सहित सुनना।

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पीठ ना हो जावे। सात सगत बोलो श्री तुरते हुए पिछली प्यारी अदा।

के पातशाह पिट हो रही है हुण इथों दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना ब्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पाव।

क्योंकि मन विच श्रद्धा सी कि ए जल मैं गुरु वास्ते लैके जा रहा ते सच्चे पातशाह ने इस जल दे नाल इशनान कर जदों जल दी गागर ना टिकन दिती खड़ाक होया अंदरों जुलाहे ने पूछया।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखते ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान दे भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथों जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैं शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां कि कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਤਲਾਂਦਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ, ਕਾਸ਼ਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਾਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਮ ਫਾਇਲ। ਤੇ ਸਰਾਰ ਸਿਰ ਵਾਹਦ ਸਰਾਰ ਜਮਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਹੁ ਬਚਨ। ਸਰਾਰ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤੇ ਭੇਦ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਏ ਕਿ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕ ਤਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਏਡਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਹਿਰਾਜ ਵਿਲੋਕਤ ਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਰੋਖ ਮੀਨਸ ਰੁਖੀਆਂ, ਰੂਹਾਨ ਜਮਾਂ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਚਕਦਾਰ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰ ਗਈ, ਅਕੜ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਤਕਣੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਕੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਵਿਚ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਕੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੁੱਖੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਇਕ ਛਿੰਨ ਇਕ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਰਚਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੁੱਪ, ਮੱਟੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੁਨਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਸਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੂਰੋ ਮਲਾਇਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਏ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੁਖਦੰਤ ਰਸਨ ਕੱਸ ਜਾਏ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਹਾਜਤਾਂ ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂ? ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਾਤਾ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਖੁੱਟ ਨੇ।
मुहि दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चांदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे तुर जांदा है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई। कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू? उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है? जदो मैं दुआ कीती, जदो इल्तजा कीती, जदो खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घर दे अग्यों दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया, घर मुक गए, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखणा ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उत्थे खलोता, तेनू क्या सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इत्थे खलोता है, गया क्यों ने? वो पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है, ते इत्थे अगे आ जा, तुसी तां कहीं जाओ अगे चल माफ कर, मैं तां हुण तेरा दर मल लिया है, तेरी दहलीज मल ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ हो के नहीं मंगता, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ हो के नहीं मंगता, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना, जब तक कोई टीठ हो के नहीं मंगता उदों तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा ही एक जगह आख्या टीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आदीठ धर्म आदीठ धर्म अत टीठ करम। वाहेगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता आदीठ धर्म अत टीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करण कारण समर्थ हो कर दई है। आदीठ धर्म अत टीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मोहतकित दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत टीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते, कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए, आपा समर्पण ना कर देवे, उदों तक कई बारी इनू शक्कां शकूकां दा शुभात दा ही शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपने तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चा धार लिया मोहे

साहिब श्री गुरु रामदास जी राग कल्याण भोपाली दियां सुरावलियां विच सर्व दुखां नूं निवारण वाले पार ब्रह्म परमेश्वर प्रति इउं जाचना कर रहे ने।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

विभास ते प्रभाती रागां दे सुमेल राग विभास प्रभाती दियां मधुर सुरावलियां विच भगत कबीर जी उपदेश दे रहे ने। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोना दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया बड़े हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते पाईसा पाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे के किस तरह दी मित्रता सी। भाई साहब फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उनां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन सुख दिंदे हन, ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इस नूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, ए सताउंदा है बाल सखाई मित्र, ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नूं ब्राह्मणी कहा है, कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ऐ सुदामा तू जगदीश नूं मिलते सही वो तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नूं दसदे होए अगे फरमान करदे हन।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उसनूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाईसा फरमान करदे हन

जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके प्रमाण की थी। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जाता है, किसे मित्र नू मिलना चाहे ते गलवकड़ी विच लिया जाता है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे, कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा ले रहे हैं, और प्रदक्षिणा लेके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हैं, ते पैरी पै के सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हैं। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हैं भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होन दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे लै रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लैके पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लैके सिंघासन वल वधे।

कि सुदामा गरीब सी, उदे कोल चावल बन्ने हुए सन पोटली दे विच, ते भगवान कृष्ण ने खोए पुछिया कि मेरी भाभी ने की मेरे वास्ते भेजिया है। भाई साहब इहदा कोई जिक्र नहीं करते। भाई साहब कहिंदे हन जिहड़ा दसम द्वार पहुंच गया उसनू ते अपनी होश ही कोई नहीं। ओ की भगवान कृष्ण नू जवाब देवेगा? अंतर ध्यान कर दिता सुदामे नू। कहिंदे ने भगवान कृष्ण ने उस वक्त जदों उहदे लेखे मेटण दा वक्त आया, क्योंकि गुरु शब्द नाल जोड़िया होया सी, ते पोटली चों इक इक चावल दा दाणा कढ के अपने मुंह विच पांदे गए। एक दाणा मुंह विच पाया ते धर्म दे दिता, दूसरा दाणा मुंह विच पाया दंदा थले चबाया ते अर्थ दे दिता, तीसरा दाणा मुंह विच चबाया

एक कबीर साहब जी का बेनती का शब्द पांच सत मिनटां विच पढ़ के समय सिर समाप्ति ते पातशाह ने मेहर कीती है जिन्हां जिन्हां ने हाजरियां भरियां हन तुहाडियां हाजरियां पातशाह लेखे लावन। कबीर साहब जी निरंकार दे बूहे अगे कुछ इस तरह की बेनती करते हैं पढ़ के समाप्ति।